श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि

खंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जोगी या बैरागी बने कब हूँ संन्यास फेस बन के दिखावई। कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोगन फरमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल गुंजर ओ गधा अनेकता पुकार ही। कह भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाकू।

ताप के सहित जो बिपाई है ताप नाद ताप ना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो बिपायत अजाप देव भूत ना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गतराण की परत कर।

करीम सोई रस करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही कि सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक जोद जान बो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मन सब एक पय अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदु न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप गोर लाव है अल्लाह अभेक सोई पुराण ओ पुराण उई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे केते नब बीज अच पच को करेंगे भज केतक प्रताच हो।

तेज दिन ताही देव भज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग बास कित मदीना मकानी वास कितक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दूह को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के बीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बटे बोध हारे बुद्ध कुप्रबोध हारे जाप सी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मडी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब बज हारे पंडित।

सतरंग न वितरंग न नेहंग न गेहंग सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनी अचयादद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न दातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न

कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाणी कहूँ जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की परम भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के ऋष्ठ पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ वत्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं।

त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राज साजं कहु राज रीतं कहु पूरण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु आरबीत और की पारसी हो कहु पहलवे पस्तवे संस्कृति हो कहु देश भाख्या कहु देव बानी कहु राज विद्या कहु

पिंगलाचारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ चैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं

जय सतरु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम मरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं सतरु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय

तीरथ तीरथ परमत सो भरम कई यकन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तब दास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत सासरत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जाछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई जगन ताप कई जपत उर्द लट कंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब दास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं।

अग्न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद क्षयं जय जात न बात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्र सितं जे राग न रेग न रोग भणं जे द्वैख न ताक न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार गदी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रो बिंद नगिंद नगं श्रेय जश गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पाल नृपाल करार त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव श्राद्ध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जम पह किन्नर जच जुअंग

प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली। भू मेरा आकाश निवास सितम रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई। जय पावक पवन प्रचंड मई।

अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा।

वरण है, अधिक से कभिक है, सदीव विश्ववरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विषेक विश्वभरण है, जिमी जमान के विघे सदीव करम परम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठौर में अभिषेक अन मानी है, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान।

न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाव है, न छल है, न छिद्र है।

करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिय अगाध आद देव की अनाथ बात मानिए नजात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदैव सर्वलोक के

सर बठौर रहे हो विराज विराज राज ब्रवीन। जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैस नंगे बिखे विराज शूद्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप। जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन। सर्व सबल बतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन नेत पूर्ण होत। सोत सोत हटे सभा।

संगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखण दमके अद सिद्ध जमके फुंग फनंग जय जय हो सी महासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिणंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण ध्वजा फरंगण फणी फुंगारण जोत जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो सी महासुर मर्दन भूमा कासल ऊर्ध अधे दामनी प्रहासन सुछव निवासन सृष्ट प्रकाशन गोड गति।

सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल डिमाहन तेज तुलंग जय जय हुसी मखा सुरमर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हारण धूम धूम।

प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाह है सुध सन्ना है अगमथा है एक वृते जय जय उसे मखासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुर बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अथम उधारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय उसे सब ठार निवासन पाए पताल आकाशन ले संकटे निवारण अथम उधारण तेज प्रकर खंड तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद अकाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी दुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा उठारे नरक निवारे अदम उधारे तूर बुझे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्र तन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रथम विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुप्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनाद अगाद ऊर्धं घंट का बिराजे रणझुन बाजे भम भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक भाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दय मंथन रिझ सब न भजे रोहरण जय जय होसी मैघासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी व्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष

कारण कर ली गर्भ कही ली ज्योत जति ली तुंद मत अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दाम दमकण आदपते डुक डुके दमंके बाघ भुवंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो से मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंडे अखंडन काल।

आदर अंत दुख दोख रहत जिह नेत नेत सब भेद कहत कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूर सिवंत कई पलट सूर सिजदा करा।

कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साध। जय जात पात नहीं भेद भरम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म, जय शत्रु मित्र दो एक सार, अच्छा सर।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूं के मान है ज्ञान हूं के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है पूर्व बिन पार पाव हिंगुला हिमाल जाव गोर कर तेजी गुण गाव तेरे नाम है जो कि जोग साध पौन साधना की देख बांधे आरभ के आरभी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सिजाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है मर टाम गेरे तेरी मान सो तपस्या कर दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेल वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने

जंत्र हूं नजाद जाके बाप हूं न मायदा के पूर्ण प्रभा के सो छटा के अनुमानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है नि जंत्र के खजानी है तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की पान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपनों को भूप है के रूप हूँ को रूप है को मत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध का भूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल होंगे काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है जो गुहों को जंत्र है के तेज होंगे तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध होंगे घर है देवन को देव है निरंजन अभिव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान

हिंगुला हिमाल गावहा बसी हल पिधाव भूर बिना पार पावया सत्य अनास है देवन को देव महादेव हुंग देव है निरंजन अभेवना तद्व विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है तरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्री के कूल के हंसनी सिसी हारूम ही राशि हो सनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ कठ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के जम्बासी जंदे कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सिर सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलबा ने हंस कैसे हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्र गिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी जगह दुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गायत है भक्करी कंधारी गोर गखरी कर दे जारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर।

हे निमाने दे मन सतगुरु नितलां दे ताल ने उठिया दी अपनी आसरा दे आसरे गुरगिरि निवास जी आप जी दा जरूर कीर्तन करदे होने आस बत बेटा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना मैं पलो सबत बेटा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जो सबना दिन कलाम चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबत दा भला सिखो सबत प्यारियो जन्म मरण किटे।

जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर वीखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट।

रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो पर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री असदुज जूं करियह रच्छा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर

जानै, घट घट के पट पट की जानै। जावुद करख करा कर तारा, प्रजाधर तब देह अपारा। जब आ करख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते

अंडज जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा होए बैठा काहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध।

0: हम निजर पवित्र हैं निज पात्र हैं जदों भी गुरु कोल आईए जदों भी गुरु कोल आईए दाते बन के बिहारी बन के दाते बन के गुरु कोल मंगण आई गुरु कोल प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई कुल्ली वाला आ जाए कोई मंगण कोई प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई कुल्ली वाला आ जाए कोई मंगण कोई प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई कुल्ली वाला आ जाए कोई मंगण कोई प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई कुल्ली वाला आ जाए कोई मंगण कोई प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई कुल्ली वाला आ जाए कोई मंगण कोई प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई कुल्ली वाला आ जाए कोई मंगण कोई प्रणाम कर लिया जाए कोई मंगण कोई कुल्ली वाला आ जाए कोई मंगण कोई प्रणाम
1: बन के आएगा बाजार जाओ शहर जाओ
2: ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਕੇ

तेरे चरणा दे नाल मेरी निम जावे। ते महाराज सच्चे पातशाह ने फिर निभाई भी है। जिथे साहबजादियां दे शरीरां नूं नीहां च चिणिया गया सी उहदे बिलकुल पिछले पासे टोडरमल दीवान हाल बनिया। जदों भी साहबजादियां दीआं बातां पाईआं जांदियां ना उदों भाई टोडरमल नूं भी याद कीता जांदा है ते सदा ही कीते जाणा। जिन्ना चिर सूरज चंद तारे रहणगे गुरु के इतिहास प्यारे रहणगे उन्ना चिर भाई टोडरमल जी नूं याद करदे ही रहणा। सो वेखो सब कुछ सेवा जवा गुरु खुश हुंदा सेवा ते सिमरन ते। जिन्नी सेवा हो जाए उन्नी थोड़ी आ। रल मिल के गुरु चरणा की सेवा करिए, थोड़ी करिए भावें करिए ते सही। नाम जपण की भी सेवा आ, बाणी पढ़न की भी सेवा आ, कीर्तन करन की भी सेवा आ, भांडे मांजण की सेवा, लंगर वरताउण की सेवा, एक सेवा थोड़ो आ। गुरु घर दे विच सेवावां बहुत आ, बंदा करन वाला चाहीदा भाई। सो कलगी धर महाराज साडी तुहाडी सारिआं दी हाजरी प्रवान करन, साडी तुहाडी सब दी यात्रा सफल करन। महाराज दे चरणां च इही बेनती, महाराज जिन्ना कु चिर जिंदगी आ बुलाउंदे रहियो सानूं, कोई ऐसा करम ना आ जाए भावें साल बाद ही तेरे दर ते आईदा आ। पर एक चाह हुंदा, तुहानूं पता ही आ वी जिदा जिदा दिन नेड़े आउंदे रहिंदे आ, हजूर साहब आउण दा चाह किदा रहिंदा वी छेती छेती मुक जाण देण, ते ओह मुकदे नहीं। जदों हजूर साहब आ जाईदा ते इत्थे वाले भजे जांदे आ, पता ही नहीं लगदा किहड़े दिन, पंज दिन हो गए अज छे दिन, कल नूं ट्रेन आ। फिर मन नूं होर तरह हुंदा वी सच्चे पातशाह तेरा दर छड के चल जाए है। भावें कलगी धर महाराज हर जगह हाजर नाजर आ, पर जिहड़ा आनंद श्री हजूर साहब की धरती ते आ। मैं तो अपने मन की दस सकता, तुसीं अपने मन नाल झात मार के वेख लियो कि किहड़ा आनंद आ इत्थे। जी करदा इत्थों उठ के जाण नूं, जी करदा नहीं जाणदा। भावें घूम फिर के जाण वाले होण इत्थे, पर फिर भी इत्थे मन बड़ा जुड़दा, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी ज़्यादा समा इत्थे हाजर नाजर रहिंदे आ। इत्थे रह के महाराज ने गोदावरी नूं भाग लाए, इत्थे रह के आ पवित्र धरती जिथे पता नहीं महाराज सच्चे पातशाह का किन्ना क तापिया, इत्थे भी इत्थे पापी तो पापी बंदे का भी मन जुड़ जाता, भावें थोड़ा चिर ही जुड़े जुड़ता आया। तो इदां दे स्थान नूं छड के जाण नूं जी नहीं करता। असल सचखंड ही ये आ, सचखंड ये है। सो भाई महाराज रहमत करन साडी तुहाडी सब दी हाजरी प्रवान करन, अरदास करके जायो सच्चे पातशाह आप जी दहमत करियो, गुरसिखी की दात झोली में पायो। अमृत छको सिंह सजो बाजा वाले दे धीआं पुत्र बन के अपना जीवन जिहड़ा उहनूं सफला कर लो। याद रखियो कलयुग विच राज गुरु नानक दा आ, ते भला उहदा होणा संत ग्यानी गुरबचन सिंह खालसा भिंडरां वाले कहिंदे हुंदे सी, जिहदे गलूए मुबारक चों इक वारी अमृत दीआं दातां, उह अमृत दे घुट लंघ गए। 10,000 साल तक गुरु नानक साहब कलगी धर महाराज उहनूं नरकां च नहीं पैण देणगे, बार बार उहनूं मौका देणगे, मनुखा जामा देणगे। क्यों? इस देही को सिमर है देव, साधे ही भज हर की सेव। जिहड़ी मुक्ति है मनुखा जामे च होणी है, उदां नहीं होणी पाई। देवते भी इस देही नूं लोचदे है। जे महाराज ने बख्शी है खंडे बाटे की पौल छक लो, अपना जीवन गुरु आशे अनुसार जीवीए तां साडा भला होणा। आओ संत जना मेरा हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, ये शब्द का जाप करके फिर समाप्ति करिए। महापुरख संत जी महाराज संत बाबा कुलवंत सिंह साहब जी, जहदार साहब, धन बाबा राम सिंह साहब जी महाराज, तिन्हां दा धन्नवाद जिहड़े बहुत प्रेम दिंदे आ सब नूं। असल दे विच आउंदा ही बंदा उत्थे आ जिथे प्रेम मिलदा है, जे प्रेम ना होवे फिर दूजी वारी उत्थे जाया नहीं जांदा। इत्थे कलगी धर महाराज ने इन्हां कु सिंघां नूं प्यार बख्शिया, चाहे कोई सेवादार भी आ, ओह वी जदों फतिह बुलाउंदा खड़ के ऐ चाह नाल बुलाउंदा, यही प्यार बार बार खिंच के लै आउंदा। सो महापुरखां दा धन्नवाद, धन कलगी धर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दा धन्नवाद, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दा धन्नवाद है। आओ आ शब्द पढ़िए फिर समाप्ति करिए। हर जस गायो जी, सारे जाने पढ़ियो भाई, नेड़े नेड़े नूं हो जाओ महाराज का जस, नेड़े शरीर करके नेड़े होइए, मन करके सुरत करके आप नेड़े हो जाएंगे महाराज। जिन्ना नेड़े हो के बह हो सकता बैठे।
ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੂੜੀ ਜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ।

जग सचे की है कोठरी सचे का उपवास इतना उपमुसमाय ले अपना उपमय करे बिना इतना पाने का